0: तुद आगै बिनवताओ।
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दया खेले सगल जगत चंगे आईया।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर भरन जात अर पात नहन जह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभाव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सकै को तू कद का ब्रह्मा विष्ण सिरे तय अगणत तिनको मोह भया मन मद का चौरासी लख जो ने उपाई रिजक दिया सबहु कौ तद का सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहुपांत बचावै सत्र अनेक चलावत काव तौ तन एक न लगन पावै राखत है अपनो कर दय कर पाप समूह न भेटन पावै और की बात कहा कह तो सौ सो पेट ही के पट बीच बचावै लिख कतहे ना छूटिया खिन खिन भूलन हार बखसनहार बखसल नानक पार उतार सुकह टल गुर सेविया एह निस सहज सोभाए दर्शन परस आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हो सिफत खसम दी नूर अर सहु कुर सहु चटिया तुद डठे सच पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सजन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी गुजरी श्री रविदास जी
के पद कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दूध त बछर थन हो बिटारियो फूल पवर जल मीन बिगारियो दूध त बछर थन हो बिटारियो

कैसे पूज कर है तेरी दासा, तन मन अर पाओ पूज चरावा, गौर प्रसाद निरंजन पावा, पूजा अर्चाया है न तोरी, कह रविदास कवन गत म।

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: जिया अंदर जियो सब कुछ जानला, सब कुछ तेरे वास तेरा कर पला, तेरा कर आनंद वधाई तुद कर, मन महता तेज अपना आप जर।
1: सर्व कला भरपूर दिसे जत कता,

तू दिया गै बिनवता। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद बह।

आपकी ये पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आपकी ये अधूर शब्द जपी आनंद साहिब जी की अरदास कुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ आप जी दे हजूर अरह प्रचार की देख हाजिर है सर प्रवान हो गए प्रवान होया प्रचार संगत जी वर कौन की आके आ सको दुख हो गए

0: पौड़ी वड्डी हूँ अडाया पार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे बस तेरा घर भला, तेरे घर आनंद वधाई तुद घर, माण महत्ता तेज अपना आप जार
1: सर्व कला।

कष्ट दुख ते लेहो बचाई, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सवाय, बहुभेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहे ओ

क्या नहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनहो संतहो, सबद तरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच सबद तित कर सभागा, कर सभागा सबद वाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वास कीते, काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन काओ, से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ, तितकार अनहद वाजे, आनद सुनहो वड पागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे, पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होए उधारो, एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख और तारो, तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो, सलोक महला पंजवा।

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती दी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याई। फिर अंगद गुर ते अमरदास, राम दासा हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई, जिस डिठाए सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए। सब थाई हुए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय,

विषादन प्रसादन दान सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखां आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुल

जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी, नूरे अरसहु कुरसहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दा जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाह, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दा जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाह, सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवा, फिरत फिरत भेट जन साधू,

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्ब सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाए।
1: सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत, चंगे

0: साईं कनो दत्त।
1: हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह

0: दुख दारू सुख रोग बया जा सुखताम ना हो, तू करता करना में नाही जा हो करी ना हो। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा, जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहब शिव सवाले जिन किति सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता जो किच करना सो कर रहा। महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे कौ जाणै पहे, नानक ताता दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक

की फतेह। सवैये महल्ले पांचवें के एक ओंकार सत गुर प्रसाद। सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुरमत मल नासी।

गोर अर्जुन गुण सहज विचारं गोर रामदास कर किया परगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो।

खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरयो बिमल बुद्ध सतगुर सामानो आजू नी संभव्यो सो जस कल कवियन बखानेओ गुरु नानक अंगद वरयो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जुन वरयो पारस परस परमान सद जीवन अर्जन अमोल आजोनी संभो पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंबो अगे गहन प्राम प्रांत दहन शीतल सुखदातो असंभो उद्वेओ पुरख पूर्ण विदातो नानक याद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर पाक जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो बडभागी लिव लागी मेदन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तोए जस भगता कुल सोडी गुरु रामदास तन।

हर संतन पाराम मिले संत प्यारे दया तारे कथे अकथ विचारो एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभ पह कर विनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाह साहा अटल गणया पूरन संजोग राम सुख है समूह पया गया वे जोगो

मेल एकत्र होए सहज टोए मन प्रीत उपजी मानिया मेल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस पोगो बिनवंत नानक सब संत मिली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा तरत सपागी राम प्रभ कर आए आराम गोर चरणी लागी राम गोर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तोरी

आनंद आनंद न वजहे वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लेव लागी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम।

0: नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथ वाओ जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझेता है सात जुग रथ संतोख का धर्म गे रथवाओ त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवाओ तो अप रथ पे का सत अगे रथवाओ काल जुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवाओ महला पहला
1: साम कहै सितंबर स्वामी सच में अच्छा सच रहे सब को सच समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाए लय प्रच जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रावन वह रंग किया कल मैं बेद अथर्बण हुआ नाओ खुदाई अलो भया नील बस्त्र लै कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सच्चार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाए

सरायरा अत नीरक अत मुछ ओए जे आवे आस कर जाय निराशे कित फल फिके फुल बक बके कम नावे पत मिटत नीवी नानका गुण चंग्याईया तत सब कोने में आपको पर कोने में ना कोए तरत राजू तोली है निवे सो गौरा हो अपराधी।